0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: खामोशियाँ, जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

कश्मीर सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, ये एक खूबसूरत एहसास है, एक ख्वाब है जो आंखों से नहीं दिल से देखा जाता है। ये एक ऐसी सरजमीन है जहां की हवाएं भी नगमे गाती है, बहते दरिया भी शायरी सुनाते हैं और हर एक मौसम एक नई तस्वीर तख्लीक करता है। ये है कश्मीर, ये है जन्नत बेनजीर। कश्मीर की रूह को समझना हो तो यहाँ की शायरी को महसूस करना होगा। यहाँ की शायरी में इबादत का एहसास है, मोहब्बत का जज्बा है और जिंदगी जीने का सलीका है। यहाँ की आवाज शायरों के कलम से हर पल फजाओं में गूंजती रहती है। यहाँ की शायरी सिर्फ सुनाई नहीं देती है, महसूस होती है, दिल में उतरती है और एक इंसान को खुद से मिलाती है। अगर शायरी कश्मीर की जान है तो मौसीकी इसकी धड़कन है। कितने ही दिल है जो संतूर की आवाज पे धड़कते हैं, जो रबाब की आवाज सुनते ही झूमने लगते हैं और जो गुलकारों की खूबसूरत आवाज में एक पुरसुकून एहसास महसूस करते हैं। कश्मीर के हर सुर में एक कहानी है, कहानी है बदलते मौसमों की, कहानी है मोहब्बत की, कहानी है आने वाले कल की उम्मीद की। यह है कश्मीर और ये सब एहसास जिंदा है यहाँ की मौसीकी से। कश्मीर का फन और फनकारी सब्र, महारत और बेपना मोहब्बत की अलामत है और ये एक ऐसा एहसास है जो रहती दुनिया तक जिंदा और जावेद रहेगा। पश्मीना शालों की बारीकी से लेकर पेपर माशी की नक्शो निगारी तक हर तख्लीक एक नई कहानी सुनाती है। मेहनत से तराशी गई लकड़ी और फितरत से मुतासिर मुसव्वरी, ये सिर्फ फनपारे नहीं है बल्कि एक कश्मीर की लाजवाल सकाफत और विरासत की अक्कासी करती है। कश्मीर सिर्फ एक नाम नहीं है बल्कि ये एक जीती जागती तख्लीक है। अगर सही मानों में खुद को कश्मीर के रंग में रंगना होगा तो यहाँ की शायरी, मौसीकी और फनपारों को देखिए तो आपको यकीनन महसूस होगा कि कश्मीर सतरंगा है।

Chinar Beats with Harsh Deepa, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

Chinar Beats with Harshi Deepa, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

0: ना चले हैं, ठंड पै गई है, कार चलिए।
1: हाय मैं हूँ आरजे ज्यूस।
2: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
3: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
4: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM हर दिन।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

बिल्कुल, इस पर तो ये सारा समा मेरा है। और ऐसी बारिश हो, सूचना और बीट्स हो, बीट्स ऑन रिपीट हो, और क्या ही चाहिए बॉस। बीट्स ऑन रिपीट, सूचना और बीट्स, अब एंजॉय कर रहे हैं ओनली ऑन रेडियो चुनाव 90.4 एफएम। एंड ढेर सारी बातें हो रही है, मस्ती मजाक, फन, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट के अलावा ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती है। हम सुपर एक्साइटेड कि शो स्टार्ट हो चुका है 12 बजे और हम बात करने जा रहे हैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में, स्पेशली इस बारिश के मौसम में जब हमारे जज्बात हो, हालात हो, ख्याल हो, मज़ा ही आ जाता है। हाय, आज जैसे गाने बजे और साथ में बातें हो, उन बातों में प्यार हो, खासकर ये प्यार तब बढ़ता है जब आप मेरा साथ देते हैं। साथ दीजिए, शो कैसा बन जाए। आप सुन रहे हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो चुनाव 90.4 एफएम।

देखिए इश्क तो है तभी तो हम आपका ख्याल रखते हैं और हर एक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाते हैं। 91.4 रेडियो चुनाव पर आप तक हम पहुंचा रहे हैं ट्रैफिक अपडेट।

हड़बड़ी में ऐसी गड़बड़ी हो जाए ना तो फिर हम पछताते हैं, अरे यार इतना जल्दी कैसे हो गया। एंड ट्रस्ट मी, जब हम हड़बड़ी करते हैं तो गड़बड़ी होने के चांसेस 99% होते हैं। सो हड़बड़ी नहीं करनी है, आपने अपने कॉशियस रहकर आपने अपनी गाड़ी चलानी है, अपने कॉशियस रहकर ये पता हो कि सेफ्टी कितनी ज़रूरी है। एंड इट्स नॉट ओनली ट्रैफिक पुलिस, इट्स आस, यानी कि ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, हम सबकी ज़िम्मेदारी हम अपना ख्याल खुद रखें। तो ज़रूरी है कि गलत जगह पे ओवरटेक करेंगे, एंड इट्स भैया दे नॉट फेयर, क्योंकि पछती गसान की सुबह थी घर, और अभी हमारे ट्रैफिक पुलिस इतनी चालाक है ना कि चालान कट जाता है और हमें फिर फाइन भरना पड़ता है, और वो चीज़ें हमें बस फ़ोन में आ ही जाती है कि भैया जी आपने इतना फ़ाइन आपका हुआ, आपने ये रूल जो है तोड़ा है। अभी सुन रिपीट है शो चुनाव और बीट्स, आप एंजॉय कर रहे हैं रेडियो चुनाव 90.4 FM पर, ढेर सारी बातें हो रही है। आप क्या कहना चाहते हैं मुझे बताएं, इस रोमांटिक मौसम में क्या लगता है आपको, क्या है चीज़ जो इस मौसम को और भी सुहाना बनाती है। 8899904904 पर कॉल टेक्स व्हाट्सएप करके शो में शामिल हो जाए।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: ना चले आए, ठंड पै गई है, घर चलिए।
1: हाय मैं हूँ आरजे ज़्यूस।
2: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
3: हाय मैं हूँ आरजे असरफ।
4: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM हर

मैं क्या बताऊं कि जब समर वेकेशंस की बात आती है तो कितना मजा आ जाता है, और मजा आ जाए तो लाइव बन जाए। और यही है बात कि हम बात कर रहे हैं समर वेकेशंस के बारे में। हमारा छुट्टियां भी अभी होने जा रही है, बच्चों की हो जाएगी, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो समर की ना वाइब भी अलग होती है। एंड स्पेशली जब हम बचपन में स्कूल के साथ जब हमारी वेकेशंस होती थी तो घूमने जाते थे नानी के घर, मामू के घर, या फिर कहीं पे आउटिंग पे जाते थे। आज भी कितने सारे प्लान्स होते हैं उस पर आज बात हो रही है। आप भी शो का ऐसा बन सकते 8999904904 पर एक्स व्हाट्सएप कीजिए और बताइएगी आपका समर वेकेशन यानी कि कहाँ जाना है बाबू। जी हाँ बताइए 8999904904 टेक्स व्हाट्सएप कीजिए, शो चुनार बीट्स का हिस्सा बन जाइए। सुन रहे हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो चुनार 90.4 FM।

बिल्कुल ऐसा ही कुछ हाल है हमारा भी, जब समर वेकेशंस की बात आती है और जब हमारे प्लान्स एग्जीक्यूट आने का टाइम होता है तो बस सांस ही थम जाती है और इंसान कहता है बस जहाँ भी हमने जाना है जल्दी जल्दी जाए और इन्जॉय करे अपनी वेकेशंस को, इन्जॉय करे अपने टाइम को, बिकॉज आई बिलीव कि जितना भी हमारे पास अभी वक्त है, जो भी खूबसूरत वक्त है, इसे हमने खूबसूरती से स्पिन करना होता है, खूबसूरती से। जी हाँ, गड़बड़ी हो जाती है हड़बड़ी, बट आपने हड़बड़ी नहीं करनी है। अगर वेकेशन से आपके पास टाइम है, इसे एंजॉय कीजिए। जी नहीं, आज सुस्त तो नहीं है, पर मैं हूँ और आप सुन रहे थे शो चुनार बीट्स। अभी टाइम ख़त्म हो चुका है चुनार बीट्स का और मैं जा रही हूँ नहीं यहाँ से कहीं पे, मैं हूँ यहीं पे और आप सुनेंगे अपने फेवरेट ट्रैक्स 8999904904 पर, यानी कि शो म्यूजिक ऑन डिमांड आप एंजॉय करेंगे। आपने क्या करना है, 8999904904 पर कॉल करनी है, टेक्स व्हाट्सएप करना है और शो म्यूजिक ऑन डिमांड का हिस्सा बन जाना है।

यही आ चुका है कि जहाँ पर आप अपने फेवरेट ट्रैक सुनेंगे, यानी कि शो म्यूजिक ऑन डिमांड स्टार्ट हो चुका है 8899904904 पर आप कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट व्हाट्सएप करके शो में शामिल हो सकते हैं। और पहली रिक्वेस्ट यहाँ पर आई है माहिब की, जो इस ट्रैक को सुनना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, तो आप भी शो का हिस्सा बन सकते हैं और अपने फेवरेट ट्रैक सुन सकते हैं 8999904904 पर, टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए और शो म्यूजिक ऑन डिमांड का हिस्सा बन जाइए।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार

जी हाँ, हमदम तो है हम एक दूसरे के। और ये सफ़र ऐसा होता है ना कि मुझे लगता है कि आपके बगैर अधूरा होता है, और जब आप आते हैं बात करते हैं तो मुझे लगता है ये पूरा हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि आप शो पे आना, बातें करना सिर्फ एक सफ़र नहीं, जज्बात है, हमारे ख्यालात है, एहसासात है, यानी विदाउट यू आई फील इनकम्प्लीट। सो मैं जा रही हूँ, बट आप अकेला फीलिंग करोगे क्योंकि शो हंगामा 2 बजे स्टार्ट होने जा रहा है। तो फिलहाल के लिए मैं जा रही हूँ, आप अपने ख्याल रखिए, हम मिलेंगे कल बराबर 12 बजे। तब तक आप सुनते रहे रेडियो चुनाव 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल के।

0: हाय, मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 एफएम। छोटा लंदन, जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपुरा तक,
0: वादिये लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
0: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन
1: रेडियो चुनार 90.4 एफएम।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

अजी अब आपने बुलाया तो आना तो पड़ेगा। दो बजते ही शुरू हो जाता है हंगामा, ड्रामा, एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, क्या बजेंगे और लाइफ का फिलोसॉफिकल टच।

0: शो शुरू हो चुका है हंगामा, जहाँ बहुत कुछ होता है अपडेट्स के साथ साथ, ट्रेंडिंग रील्स और मीम्स के बारे में बात होती है, हर दिन का एक स्पेसिफिक टॉपिक होता है और आते आते प्ले होता है कुछ खास, कुछ क्यूट सा।
1: मैं तेरी की लगती
2: तू बल्लिए डार्लिंग जट दी,
1: मैं तेरी की लगती
2: बल्लिए डार्लिंग जट दी।
0: मेरा भी यही सवाल है कि मैं आपकी क्या लगती हूँ। देखिए, मैं मुझे तो पता है कि मैं आपकी दोस्त हूँ, होस्ट हूँ आरजे अस्त्रा, ओनली ऑन रेडियो सुनार 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दल की धड़कन। बैक टू बैक ट्रैक्स हैं।

वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो सुनार 90.4 एफएम. अभी शो शुरू हुआ है और हमारी एक परंपरा है कि आते ही शो शुरू होने के बाद हम बात करते हैं कि क्या चल रहा है सोशल मीडिया की दुनिया में, चाहे फेसबुक है, एक्स है, इंस्टाग्राम है एंड यूट्यूब है. लोग क्या रीपोस्ट कर रहे हैं, डांस रील्स बन रही हैं या किसके बारे में हो रही है बात. और आज एक ऐसा ट्रैक है जो एक्चुअली एक रिमिक्स है और एक ऐसी मूवी से जो मुझे लगता है हर किसी ने देखी है. वेलकम एवरीबॉडी, कम वेलकम वेलकम मूवी से ये गाना है, बट इसका रिमिक्स अभी रिसेंटली रिलीज हुआ है वेलकम टू द जंगल मूवी से. एंड दिशा पटानी है इसमें एंड अक्षय कुमार है. बट वो वाइब है गाने में कि नहीं है वो तो सुनने के बाद पता चलेगा बहुत. बट जब मैंने सुना और लोगों का क्या कहना है वो भी सुना तो लोग कह रहे हैं कि we do not like it. अब देखिए, लोगों को हमेशा, जरूरी नहीं है हमेशा, बट यूजुअली ओजी वर्जन्स, जो ओरिजिनल वर्जन्स होते हैं गानों के, वो पसंद आते हैं. अब आप बताइए कि आपको ये गाना पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमें भी बताइए ताकि हम भी आपकी राय लें और लोगों तक पहुंचाएं. और देखिए, दिस इज अ चेन, आप अपने विचार भेजेंगे और हम अपना प्यार भेजेंगे, क्योंकि हम तो हैं रेडियो सुनार.

0: हाय मैं हूँ आरजे ज्यूस।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM हर दिल।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो सुनार 90.4 एफएम. ये है दिल की धड़कन. जी हाँ, शो हंगामा है. अपडेट्स, इन्फॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, ड्रामा, क्या बजेंगे. और अभी हम बात करने जा रहे हैं अपडेट्स के बारे में. देखिए, अभी अपडेट यही है. एंड स्पेशली अबाउट रेलवे अपडेट की बात करें तो एवरी ट्रेन इज शेड्यूल एज पर द समर टाइम टेबल. एंड यू कैन अवेल दिस समर टाइम टेबल हमारे जो ऑफिशियल ऐप है रेल वन. चाहे आपको ट्रेन बिटवीन स्टेशन की लोकेशन चाहिए या ट्रेन डिले है तो क्यों है, कितना टाइम लगेगा, किस स्टेशन पर है, लाइव लोकेशन, सब कुछ आपको रेल वन ऐप पे मिल जाता है. और अभी एक और अपडेट है कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है माजमा और बड़गाम स्टेशन में, बिकॉज दैट इज़ ऑन गोइंग, ऑन एंड ऑफ चलता रहता है. पर आज जैसे कि बारिश हो रही थी तो इसीलिए वो थोड़ा लाइक ऑफ है फिलहाल के लिए. फॉर अ वीक वो ऑफ ही रहेगा. बट तब तक के लिए जो भी ट्रेन्स है वो एज पर द शेड्यूल हैं. बट अपने रिस्पेक्टिव स्टेशन पर 10-15 मिनट पहले पहुँच कर आप अपने लिए एक बहुत बड़ी चीज़ सही कर सकते हैं. आप अपने अपना जो शेड्यूल है उसको ख़राब होने का कोई चांस नहीं है. बिकॉज अगर आप अपने रिस्पेक्टिव स्टेशन पर 10-15 मिनट पहले पहुँचे, कोई ट्रैफिक जाम नहीं, कोई ट्रेन डिले नहीं, एंड ऑलमोस्ट कॉट द ट्रेन वाला कोई सीन भी नहीं. इश्क तो हमें भी है, पर आप रिस्क ना लें कि आपकी ट्रेन मिस हो जाए. मैं हूं असरा, सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM. कुछ ही ट्रैक्स के बाद हम बात करेंगे कि आज का टॉपिक क्या है. एंड एज फार एज आई नो आज का टॉपिक क्या है तो कुछ खास है, कुछ अलग है. एंड यू विल डेफिनेटली लाइक इट. मैं हूं असरा, सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM. ये है हर दिल की धड़कन.

0: हाय मैं हूँ आरजे ज़ू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिड़ार 90.4 FM हर दिल।

जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो यही हूँ बराबर 4 तक। कैसे जा सकती हूँ मैं आप सबको छोड़कर? बट जाना तो जरूर है क्योंकि छुट्टी मस्त जब है छुट्टी। मगर देखिए छुट्टी तो मनाते रहेंगे, बट देखिए बराबर 4 तक मैं आपके साथ हूँ, तो जल्दी से जुड़ जाइए बेबी अपने विचार, तभी तो हम हैं सही मेरे यार वाला रेडियो चुना रेडियो नाना 9049 4 इज नंबर। यू कैन कॉल मैसेज टेक्स्ट व्हाट्सएप और बन सकते हैं इस हॉरर फ्रीक्वेंसी का हिस्सा।

वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो सुनार 90.4 FM. ये है दिल की धड़कन. और जैसा कि हर दिन हमारा एक स्पेसिफिक टॉपिक होता है, हम हर दिन किसी ना किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात करते हैं जो इन्फॉर्मेशन एंटरटेनमेंट से भरपूर होता है. और आज हम ऐसी चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारे बॉडी का एक पार्ट है, दैट इज़ हमारा दिमाग. आपने कई बार सुना होगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मिचु दिलस दुबराए गथा, मेरा दिल ये कह रहा है, मेरा दिल कह रहा है कि ये नहीं करें, क्या करें, मन नहीं कर रहा. पर वो सारी चीज़ें दिमाग का खेल होता है बॉस. एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू ब्रेन एंड ब्रेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट असेट. इसके रिलेटेड क्या फैक्ट्स हैं और हमारी लाइफ पे ये दिमाग कैसे असर करता है, और जब इस दिमाग पर असर होता है तो हमारी मेंटल हेल्थ कैसे असर होती है, इन सब चीज़ों के बारे में बात होती होगी. और देखिए अभी बराबर 3:30 तक हम टॉपिक के बारे में बात करेंगे. उसके बाद एक स्पेशल सेगमेंट होता है, दैट्स अबाउट स्पोर्ट्स, गेम ऑन. सो स्टे ट्यून्ड टू द हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्थ कश्मीर 90.4 FM. ये है हर दिल की धड़कन.

लेकिन सर विसल नहीं बजानी है बल्कि बात भी सुनानी है। 8899-04-904 इज नंबर, यू कैन कॉल, मैसेज, टेक्स्ट, व्हाट्सएप, इतने सारे ऑप्शन तो जिंदगी नहीं देती जितना रेडियो चिनार दे रहा है आपको। जल्दी से आ जाइए, 8899-04-904 इज नंबर, आई रिपीट, आप हमसे जुड़ सकते हैं और इस हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी का हिस्सा बन सकते हैं।

0: हाय, मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM।
1: Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

Star Beats with Harshadeva, only on Radio Channel 90.4 FM.

0: वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो सुनार 90.4 एफएम. ये है हर दिल की धड़कन. और जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं ब्रेन एज एन असेट के बारे में, और हमने बहुत सारे फैक्ट सुने हैं ब्रेन के बारे में कि हम अपने ब्रेन का सिर्फ और सिर्फ 10% इस्तेमाल करते हैं और बाकी का 90% हम इस्तेमाल नहीं करते हैं. बल्कि ये एक मिथ है, बल्कि ये बात है कि हम बराबर 10 नहीं बल्कि 100% ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं. और अगर ब्रेन की बात करें, हमारे दिमाग में सारे हार्मोनल जो भी हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं, चाहे नॉन एंडोक्राइनल हो, एंडोक्राइनल ग्लैंड्स हो, सारा कुछ हमारे ब्रेन से फंक्शन होता है. हमारी ग्रोथ, हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, हमारी नींद, हमारी एपेटाइट, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू द ब्रेन. और देखिए, आजकल मेंटल हेल्थ इश्यूज काफ़ी हो रहे हैं. वो इसलिए होता है क्योंकि हम अपने ब्रेन हेल्थ का ख्याल नहीं रखते. और बहुत सारे ऐसे सुपर फूड भी है, खाने में हम अपने ब्रेन का ख्याल रख सकते हैं. लोग कहते हैं कि बादाम खाइए, मेमोरी बढ़ती है, पर ये सच है कि आप कुछ तरीके के अगर सीड्स खाते हैं जो एक्चुअली सुपर सीड्स होते हैं, चाहे मेलन सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, चिया सीड्स हैं, इन सबको खाने से आपकी ब्रेन हेल्थ बढ़ती है और आपकी मेमोरी से लेकर आपकी सोच, आपकी कॉग्निटिव थिंकिंग, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ सकती है डेफिनेटली.
1: तू मिला था मैं ये ना जानता था हो का.
0: बिल्कुल, पहले तो पता नहीं था कि ब्रेन के होने से इतना इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में जुड़ जाता है, इतनी सिग्निफिकेंस बढ़ जाती है. और भी क्या क्या चीज़ें हैं कि व्हाई डू वी एक्चुअली नीड आवर ब्रेन. देखिए, दिमाग की ज़रूरत है. सब कहते हैं दिमाग आसुन, दिमाग इस्तेमाल छासा करूँ, मगर काचे के एक्चुअली हमारा ब्रेन इन सब चीज़ों के अलावा किस चीज़ से रिलेटेड है और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए. अभी तो वक्त है, अभी तो काफ़ी वक्त है, तो बन जाइए शो का एक्साइटेड. 9994904 इज द नंबर, यू कैन कॉल, मैसेज, टेक्स्ट, व्हाट्सएप. मैं वस्त्रा, सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन.

0: हाय, मैं हूँ आरजे दीवा और आप सुन रहे हैं रेडियो चनार 90.4 एफएम। The game is on. Tune into Radio Chennai 90.4 FM. Game on with RJ Asra. Only on Radio Chennai 90.4 FM. 4 FM. 4 FM.
1: Chinar Beats with RJ Deva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: आरजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
2: The game is on. Tune into Radio Chennai 90.4 FM. Game on with RJ Asra. Only on Radio Chennai 90.4 FM.
3: वाओ, तो आप भी बोलेंगे क्योंकि शुरू हो चुका है गेम ऑन।
4: सुरमाया कुछ जद पाओ मुंडे तक चंदे नहीं दीवा बन मोर नी जिधर नु जा।
3: जो सेगमेंट है हमारा, इट्स अबाउट स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट एंड स्पेशली स्पोर्ट्स के बारे में बात होती है, चाहे लोकल नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स अपडेट हो। मैं वास्तव सुनते रहिए रेडियो चला 90.4 एफएम। अभी चल रहा है गेम ऑन, आप कर सकते हैं हमें फोन 8899904904 इज द नंबर। यू कैन कॉल, मैसेज, टेक्स्ट, व्हाट्सएप।

स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्म

गंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कॉपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाएं, क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जाने गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स

0: रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

हाय, मैं हूँ अस्टा और आप सुन रहे थे शो हंगामा बराबर चार तक। और आज आपका और मेरा साथ यहीं तक था, पर कल वापस आऊंगी करने आप सबको एंटरटेन ओनली ऑन रेडियो सुनार 90.4 एफएम। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 एफएम। ये है हर दिल की धड़कन। आज के लिए बस इतना ही। साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, ओवर एंड आउट।

0: पानी। पानी एक ऐसी नियामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

0: हाय मैं हूँ आरजे सूज।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीबा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

नशा मुक्त लोला T20 क्रिकेट कप 2026 ऑर्गेनाइज्ड बाय स्पोर्ट्स क्लब चंडीगाम लोला इन कोलैबोरेशन विद स्वेलैंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट कुपवारा अंडर द थीम नशा मुक्त भारत द बैटल ऑफ क्रिकेटिंग जायंट्स 32 टीम्स फ्रॉम नॉर्थ कश्मीर विद वन गो To lift the trophy. Mark your calendar for this knockout T20 Cricket Cup. Tournament is being played from 18th May 2026 onwards at historic sports stadium Chandigam Lola. The tournament is sponsored by Quality Healthcare Hospital Kupwara, Lazzat Spices Kashmir, Study

कैफे लोला, आर ट्रेडिंग कंपनी सोगा, लोन ब्यूटी केयर सोगा, क्रिकेट टॉक शो, मीडिया पार्टनर TRK न्यूज कश्मीर, नशा मुक्त लोला T20 क्रिकेट कप 2026, इट्स ऑल अबाउट क्रिकेट क्रिकेट एंड क्रिकेट। ऑफिशियल रेडियो पार्टनर, रेडियो चिनार 90.4 FM।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है। और उनके साथ प्यार से बात करके, गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिएं। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट टुगेदर दैट वी आर responsible citizens of our society. Let us say hi to life and bye to drugs.
1: Hum hai team Radio Chinar 90.4 FM and we care for you.

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
0: वादिये लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर

0: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक।
1: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
2: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
3: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
2: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिये लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
3: दिल को
4: करार आ जाए
3: जब भी आए
4: सुहानी शाम,
3: दबी यादें महक जाए
4: जब भी आए
3: सुहानी शाम,
4: सुनिए सुहानी शाम
3: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
4: 90.4
3: एफएम।
5: Hey!

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी।

0: शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
0: 90.4
1: FM।
2: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जानें गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चिनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
3: हम है टीम रेडियो चिनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

इस जमाने में तेरे सिवा तू ही बता कौन था अपना। अब ना ही कोई उम्मीद, ना ही आंखों में कोई सपना।

यहीं पे तुमको जन्म मिला है, यहीं पे तुम्हारा दम निकलेगा। देख लेना एक दिन सारी दुनिया का आसमान कम निकलेगा।

गिना जाता था भले लोगों में, सुना जाऊं ऐसी जुबान था, आपसे क्या कहूं, दिल टूटने से पहले मैं भी

इसके हर मोड़ पे एक नई कहानी, एक नया किस्सा है। पढ़ाओ दर पढ़ाओ, जिंदगी का सफर ही कुछ ऐसा है।

0: आते।
1: गुजर बसर अब दिन रात उसके दिल में मेरा है, खबर ये भी ना रहा क्या उसका क्या मेरा है। करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, क्योंकि खुशी हो या दर्द अब ये सब कुछ मेरा है।

रंग खुशबू फूल महक ना ही देखी कोई सज धज, सूखे पत्ते सी भटक रही है जिंदगी जैसे कोरा कागज।

इश्क में अच्छा नहीं लेता रहे तू मेरा इम्तिहान, कहीं ऐसा ना हो जिस्म से निकल जाए ये जान।

Thank you.

रोते रहे जिंदगी के समंदर में तूफान बवंडर खूब गए, सोचा था साहिल पे मुस्कुराएंगे किनारे पे आके।

0: मैंने तो देखी है तुझे, कैसे इसकी सूरत दिखाऊं। तुझे समझना है जिंदगी क्या है, अब मैं क्या बताऊं।
1: देखा है जिंदगी को कुछ इतना करीब से।

तेरे होते हुए भी आज मेरा प्यार मुझसे जुदा है। मैं क्यों और कैसे मानूं, मैं कैसे कहूं तू खुदा है।

वक्त की तरह इंसान हर पल बदलता रहता है, अब किसी को पीछे मुड़के कौन याद करता है।

0: रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: तभी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
2: 90.4
1: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: モニーカ
1: ー、वो आ गया, देखो, देखो वो आ गया।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

तमाशा दिखाते हैं, गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं, उनको तो कुछ नहीं कहते, मगर मगर

जिगर, चैन, आराम, राती, सुबह, दोपहर और शाम, छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं, सामने लूटते हैं और आप बोल नहीं पाते हैं, देखो ना दर्द, हिस और जख्म दे जाते हैं, तो आप कुछ नहीं कहते हैं।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM। दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: कुछ नहीं चलेगा।
1: अरे अरे लेकिन लेकिन मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या क्या करती हो? अच्छा अच्छा सुनो, एक बार एक बार
0: पांच
1: लेकिन एक बार।

0: बता दूं? वो यहीं पर।
1: यहीं?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: आप जानती हैं हम क्या गा रहे हैं?
1: मैं इतना भी नहीं समझूंगी, आप ही ने सरगम सिखा रहे थे।
0: आपको तो नहीं सिखा रहा हूँ, आपने तो अपने बाबूजी से सीखा होगा। हाँ तो कहाँ तक पहुंचे थे हम?
1: पंचम तक।
0: कैसे? कहिए ना।

0: ओ सवरिया ओए होए ओ तेरी तिरछी नजरिया
1: ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया ओए ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया
0: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कतरिया ओ सवरिया।

0: आए करार हो गोरी बढ़ के बुद्धन तीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय हाय।

0: पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ हो गोरी, हो नटखट हो खटपट हो पनघट हो झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़।
1: तोरे नैना ओ मीठे बहना, ओ तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना हाय हाय।

0: चल दिए तन के वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं।
1: हम थे वो थी हम थे,
2: हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया।

लंबा लंबा सांस, धीरे धीरे उसने खींचा, आ हा हा, फिर उसका पल्लू बनके उसका दांत, धीरे धीरे मैंने खींचा, आ हा हा, घबराहट में फिर अपना अपना हाथ, उसने खींचा मैंने खींचा, आ हा हा, हम थे वो थी और समार रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया। बाजू।

0: यूं ही साथी
1: है बंदी मुट्ठी लाख की
2: और रेडियो चुनाव की फॉरेस्ट एजेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: अरे बंदी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

0: दे जो समझाए उसी की मची धूम आ जो समझाए उसी की मची धूम
1: जो समझा उसी की मची धूम जो समझा उसी की मची धूम
0: बाजू।

यहीं पे तुमको जन्म मिला है, यहीं पे तुम्हारा दम निकलेगा। देख लेना एक दिन सारी दुनिया का आसमान कम निकलेगा।

इसके हर मोड़ पे एक नई कहानी, एक नया किस्सा है। पढ़ाओ दर पढ़ाओ, जिंदगी का सफर ही कुछ ऐसा है।

0: आते।
1: गुजर बसर अब दिन रात उसके दिल में मेरा है, खबर ये भी ना रहा क्या उसका क्या मेरा है। करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, क्योंकि खुशी हो या दर्द अब ये सब कुछ मेरा है।

रंग खुशबू फूल महक ना ही देखी कोई सज धज, सूखे पत्ते सी भटक रही है जिंदगी जैसे कोरा कागज।